0: रखनीस के बादशाह जी महाराज
1: कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह बेक सारा यार गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज धन धन श्री गुरु साहिब पातशाह महाराज जी आप जी करो शुक्राना सतगुरु जीओ अपने बच्चों पासों अपनी निकी बुद बिठा के आपने आसा दीवार संपूर्ण कीर्तन करवाए शब्द कीर्तन कर दिया आसा दीवार कीर्तन कर दिया बेनती कर दिया भूल गलतियां हो गई होंगे सतगुरु जीओ अंजान बच्चे समझ माँ बाप सतगुरु जीओ गुरमुख प्यार भी संगत बेअंत माया हादत बने पातशाह जी आप खजाने भरपूर करने महाराज जी कारोबार के वादे बख्शने महाराज जी चढ़ती कला उच्चा सच्चा दिन महाराज जीओ अपने चरणा ना प्रीति ना जुड़ी रखना हर दुमदान फतेह करने खुशियां करने यात्रा

0: ब्राह्मण है, किसी ने कहा लै मैं शूद्र जा वैश हां, ना ए वर्ण अगे जानगे, ना वर्णा दिया जाता अगे जानगियां।
1: देहो आथा सब रात,
0: ओथे जाके दिन चढ़ जाएगा, एथे ते रात बनी हुई है। जिवे रात दा हनेरा हुंदा, कुछ नजर नहीं आउंदा ना, जीव दे मन दे अंदर बाहर दिसै चानना, दिल अंधियारी रात, ऐसी मनमुखताई दी हनेर करदी दी रात बनी हुई हिरदे दे अंदर, इस नूं कुछ नजर ही नहीं आउंदा कि शरीर असार है, शरीर झूठा है, शरीर मिथ्या रहण वाला नहीं। ये जवानी भी ढल जाएगी, मिथ्या है रहण वाली नहीं, ये जात भी मिथ्या है नाल जाण वाली नहीं। इथे ते जिवे रात्रि दे हनेरे च कुछ सुझदा नहीं, जीव नूं कुछ नजर नहीं आउंदा, पर दिन चढ़ जावे ते सब कुछ साफ साफ नजर आउंदा ना। जदों काल रूपी सवेरा होवेगा, मौत रूपी दिन चढ़ जावेगा, फिर इस नूं नजर आवेगा। जिस शरीर ते माण कीता सी शरीर भी नहीं निभिया, जिस जवानी ते माण कीता सी जवानी भी जमदूतां दे अगे कम नहीं आउंदी, जिस जात का माण किया सी वह जात भी परमेश्वर जी दे दर ते मन्नी नहीं जाती, फिर दिन चढ़ जाता है। जिस दे उपर माण किया सी सब कुछ मिथ्या है।
1: साध कर समधा तृष्णा क्यों तेल,
0: हे गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी, ये जेडे रसकस ने ना बड़े प्यारे लगते ने, बड़े चंगे लगते ने, महाराज छड़े नहीं जाते, किवें छड़िए, कृपा करके कोई जुगत दसो। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी जुगती दस दे ने भाई, जिन्हें रसना दे स्वाद ने, जिन्हें रसा कसा दे स्वाद ने, जिन्हें रस ने चाहे विशे भोगा दे खान पीन हंडाउण दे, इन्हां नूं समदा लकड़ा बना लैणा कर, बालण बना लैणा कर, इन्हां नूं
1: तृष्णा घिओ तेल,
0: ते जिहड़ी तृष्णा है ना इस नूं घिओ बना लै, तेल बना लै। जिवें अग बालण वास्ते तेल पाया जावे ते साध संगत जी अग झट ही मच पैंदी है, सिद्धी लकड़ा नूं अग लाईए नहीं लगदी। पुरातन समया विच हुण भी वह बीबिया मौजूद ने, सिवाणियां जिहड़ियां गोहे दे उपर पाथी दे उपर तेल पा के फिर डब्बी दी तील दे नाल अग लाया करदियां सन, जिन्हां दे कोल लकड़ा होया करदियां सन, लकड़ां ते तेल पाउणा फिर अग लाउणी। अज भी हलवाई लगदे ने व्याहां शादियां ते, इसे प्रकार धार्मिक समागमां ते जदों पकवान बनाउणे हुंदे ने ना, ते भट्ठियां विच अग बालणी हुंदी है, मुढ़ियां जिहड़ियां मंगवाउंदे ने, लकड़ां मंगवाउंदे ने, डक मंगवाउंदे ने, उन्हां डक्कां नूं लकड़ां नूं भट्ठी विच पा के तेल पा के फिर अग लाउंदे ने, सिद्धी लकड़ां नूं अग नहीं लगदी। इसे प्रकार अग दे उपर घिओ पाया जांदा, कोई पवित्र शरीर चढ़ाई कर जावे चिखा दे उपर घिओ पाया जांदा, अग मचदी है। सतगुरु जी बचन करदे ने भाई, इह जिहड़ी रसकस ने, रसा कसा दा स्वाद इन्हां नूं ते बालण बना लै, लकड़ा बना लै, ते जिहड़ी तृष्णा है इहनूं घिओ अथवा तेल बना लै, जिस दे नाल इह रसा कसा दी भुख सारी सड़ जावे, मिट जावे।
1: आम क्रोध अग्नि सिउ मेल,
0: ते महाराज फिर अग केड़ी भड़केगी, अग केड़ी मुके जिहड़ी बलेगी, जिस दे नाल रस कस सड़ के भस्म हो जाण। ते सतगुरु जी बचन करना करदे ने भाई, जिहड़े काम क्रोध है ना इहनां दी अग्नि बना करके, इहनां दे मेल दे नाल अग्नि बना बना कर, अर्थात काम अते क्रोध दी अग्नि दे नाल, इस प्रकार ये जेड़ा बालन है इच्छावां रूपी रसा कसा रूपी स्वादा रूपी इस नूं साड़ना कर।
1: ओम जग अर पाठ पुराण,
0: इसे प्रकार काम क्रोध जो तृष्णा दा घिओ ते तेल पावेगा ना, इस दे नाल ब्रह्म ज्ञान दी जेड़ी अग्नि ओ मचेगी, जिस दे विच काम अते क्रोध इन्हां नूं मेल करके पा देना कर, ए वी सड़ जाण, अर्थात काम ते क्रोध दी निवृत्ति हो जावे।
1: ओम जग अर पाठ पुराण,
0: महाराज होम कीते जांदे ने, जग कीते जांदे ने, पुराणा दे पाठ कीते जांदे ने कि ओ सफले नहीं हुंदे, ते हजूर फरमावणा करदे ने भाई इसे नूं हमन समझ, इसे नूं ही अश्वमेध जग कर, इसे नूं ही 18 पुराणा दा पाठ जानना कर। जो परमेश्वर जी दे हिरदे नूं पा जाना है, परमेश्वर जी नूं भावै, परमेश्वर जी दे भाणे नूं मिठा करके मनना ना, यही ही जग करने, इहो पुराणा दा पाठ अते इहो ही हमन है। जे परमेश्वर जी दे भाणे विच नहीं आया, भाणे नूं मिठा करके नहीं मनिया, जग भी परवान नहीं, हवन भी प्रवान नहीं, ते पुराणा दा पाठ भी पढ़िया प्रवान नहीं। परमेशर जी दा भाणा मनना, तिस दे हिरदे नूं पा जाना, इहो ही होम जग ते पुराणा दा पाठ जानना कर। जिहड़ा पा जांदा है ओह वाहिगुरु जी दे दर ते प्रवान, सफला हो जांदा, शोभनीक हो जांदा है, जीओ पुग जांदा है वाहिगुरु।

श्रावक सोद समूह सिधान के देख फिर घर जोग यति के सूर्य सुरार्दम सोध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माधे मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कुदत कौन के गौन को जात निवारी पारी पुजान के पुह।

पवन आहार जति जद्धार सब सुविचार हजार रख देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखै शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगी भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्ले ना हल्लेंगे तोर अरीन मरोरम वासन माते मतंगन।

हरियार विचारे सार की धार बछैया, तोर देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया, गाढ़ी गड़ान को तोड़न हार सो बातन ही चकचार लबैया, साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया, दानव देव फनिन निसाचर भूत भविक भवान जपेंगे, जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाठ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसंग फिरा जाग सत्र सभा अवलोक जपेंगे, मानव इंद्र गजेंद्र नरादिव जंत्र लोक को राज करेंगे, कोटि स्नान गजाधिक दान अनेक स्वंबर साज परेंगे, ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फांस परेंगे, जे नर श्रीपद के

पियो जहता पान खेद भेद अशेद मुखचार गावत वेद जह नेद निगम का हंत मुखचार बकत बेअंत अनभिज अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जे कीन जगत पसार।

दार जय कोट इंद्र निपार की ब्रह्म विषन विचार के राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल के सिंध बिंद नगेंद्र के माछ काछ फनेन्द्र के देव आदि कुमार के

तुफे हरी शिते हरी नभे हरी इहा हरी उहा हरी जिमी हरी जमा हरी अलेख हरी अभेग हरी अदोघ हरी अद्वैक हरी अकाल हरी अपाल हरी अशेद हरी अभेद हरी अजंत्र हरी अमंत्र हरी सुतेज हरी अतंत्र हरी अजात हरी अपात हरी अमित्र हरी अमात हरी अरोग हरी अशोक हरी अभर्म हरी अकर्म हरी अजय हरी अभय हरी अभेद हरी अशेद हरी अखंड हरी अभंड हरी अदंड हरी प्रचंड हरी अतेव हरी अपेव हरी अजेव हरी अक्षेव हरी पजो हरी थपु हरी तपु हरी जपु हरी जलस्तु ही थलस्तु ही नदिस्तु ही नदस्तु ही वृक्षस्तु ही पतस्तु ही छितस्तु ही ऊर्ध्वस्तु ही पजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु अंग जिमी तु ही जमा तु ही मकी तु ही मका तु ही अभू तु ही अभय तु ही अशु तु ही अशय तु ही जतस्तु ही प्रतस्तु ही गतस्तु

भूत बंजारी चित छौना सब दूध आधारी पान के आहारी सो भुजंग जानियत है। ऋण के बसैया धन लोभ के तजया ते तो गौवन के जैया ब्रेक भैया मानियत है। नभ की उडैया ताहे पंछी की बटैया दीत बगला बिड़ाल ब्रेक।

भूम के बस याता है भूजरी के जैया का है नव के उड़िया सोची रैया का बखानिया फल के बस याता है बांदरी के जैया का है आधे से परे याते तो भूत का पशानिया जल के तरह को गंगे ऋषि का हत जाग आग के बछैया सोचा कोर साम मानिया सूरज सिवैया ताहे कौल की बड़ाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि का पहचानिया नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जिय ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धीन चारी रिकी के सना।

मूर रूढ़ पीटत न गूढ़ता को भेद पावे, पूजत न ताहे जागे राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरिसाल, सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जोगी जटाधारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी, ध्यान काज

के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक से उभय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्ण के ते वेद और पुराण के ते सिमरत सबुहन के होए होए बिताए है। मोन जी मदार के ते असुनी कुमार के ते अंशावतार के ते काल बस भय है। पीर और पिकाम्बर के ते गणना पर तुगियते ब्रह्मचारी बड़े बड़े शत्रधारी शत्र ही की छाया कई कोस लोचन रत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीप और दिलीप कैसे शत्रधारी बड़ो अभिमान भुज

तिज दे करे अनेक तूप ची कपट भेस पोस दी अनेक दान वावत है शीश का भयो मल जो पै काढ़त अनेक डंड सो तो ना डंडौत अस टांग अथ तीस का भयो रोगी जो पै डार रहे हो।

शीश पट कट जग कान में खजूरा दस मून छट कट मित्र पुत्र होंगे सुख सो आ को चरैया फल फूल को बछैया सदा बन को भ्रमया और

नाचुई करत मूर्दा दर करत शोर सदा घन घोर घन करी करत है। एक पाए ठाठी सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाव बूम श्रावक धरत है। पहन अनेक युग एक ठौर बास कर काग और चील देत देत विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुआ लीन भावना यकीन दीन कैसे कह दरत है। जैसे एक स्वांगी कहू जोगी या बैरागी बन कबू सन्यास भेद बन कै दिखावई कहू पौन हरी कहू बैठे लाए तारी कहू लोभ की खुमारी ये तो अनेक गुण गावई कहू ब्रह्मचारी कहू हाथ पे लगावे बारी।

गद राण की परत कर पताल के बात क्यों भुजंग ना तरत है। को भय मुंडिया सन्यासी को योगी पायो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान को हिंदू तुरक को राफ जी इमाम साफी मानस की जात सब का पहचान वो करता करीम सोई राज कर रहीम ओई दूसरो न वेद कोई भूल ब्रह्म मान वो एक ही की देव सभी को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो देहु राम सी सोई पूजा निवाज ओई मानस बैग पर अनेको भ्रमाव है देवता देव जच गंधर्व।

जैसे एक धूर से अनेक धूर पूरत है, धूर के कण का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद से तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप से अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उन को करत भछ, केते अच्छ बछ हुए सब पछ उड़ जाएंगे। केतना बीच अच्छ पछ को करेंगे भछ, के तक प्रत्यक्ष हुए पछ।

आदंगना व्याधंगा गाधंग स्वरूपे अखंडत प्रतापाद अच्छा विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना वरणंग ना व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंग सनेहंग सनाथे उडंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे ना जाते ना पाते ना सत्रे ना मित्रे सो भूते भविखे भवाने अचित्रे ना रायंग ना रंकंग ना रूपंग ना लेखंग ना लोभंग ना चोभंग अभूतंग अभेखंग ना सत्रंग ना मित्रंग ना नेहंग ना गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहं ना कामं ना क्रोधं ना लोभं ना मोहं अजूनि अशयाद अद्वै अजूहं ना जन्मं ना मरणं ना वरणं ना व्याधं ना रोगं ना सोगं अभय निर्विखादं अशेदं अभेदं अकर्मं अकालं अखंडं अभंडं प्रचंडं अपालं ना तातं ना मातं ना जातं ना कायं ना नेहं ना गेहं ना परमं ना पाह्यं ना रूपं ना उपं ना कायं ना कर्मं ना त्रासं ना प्रासं ना पेहदं ना परमं सदैवं सदा सिद्ध बिरधं सरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तं प्रभाद अनुक्तं प्रतापे अयुक्तं अशयाद अविक्ते अथापे विभुक्तं अशयाद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे ना नेहं ना गेहं ना सुखं ना साकं परेयं पवित्रं पुनीतं अताकं ना जातं ना पातं ना मित्रं ना मंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मं ना भर्मं ना सर्मं ना साके ना भर्मं ना चर्मं ना कर्मं ना बाके ना सत्रं ना मित्रं ना पुत्रं सरूपे नमो आद रूपे कहू कांज के मंज के परम पूले कहू रंग के राज के धर्म अलूले कहू देश के भेद के धर्म धामे कहू राज के साज के बाज तामे कहू अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहू सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहू अंग के रंग के संग देखे कहू जंग के रंग पेखे कहू धर्म के करम के हरम जाने कहू धर्म के करम के परम माने कहू चार चेष्टा कहू चित्र रूपं कहू परम प्रज्ञा कहू सर्वभूपं कहू नेह गृहं कहू देह दुखं कहू औषधि रोग के सुख सुखं कहू देव विद्या कहू दैत्य वाणी कहू जच गंधर्व किन्नर कहानी।

कहू भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहू देव कन्या कहू दानवी हो कहू जश विद्याधरी मानवी हो कहू राजसी हो कहू राज कन्या कहू सृष्टि की पृष्ठ की।

कहु मद्रवाणी कहु शूद्र स्वरूपं कहु वेद विद्या कहु काव्य रूपं कहु चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहु परम पुराण को पार पावे कहु बैठ कुरान के गीत गावे कहु शुद्ध सिकं कहु ब्रह्म धर्मं कहु वृद्ध अवस्था कहु बाल कर्मं कहु ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहु नेह देहं कहु त्याग गृहं कहु योग भोगं कहु रोग रागं कहु रोगहर्ता कहु भोग त्यागं कहु राजसाजं कहु राजरितं कहु पूरण प्रज्ञा कहु परम प्रीतं कहु वार भी तोर की पारसी हो कहु बहर भी पस्तवी संस्कृति हो कहु देश भाग्या कहु देव बानी कहु राज विद्या कहु राजधानी कहु मंत्र विद्या कहु तंत्र सारंग कहु यंत्र रितं कहु शस्त्र तारंग कहु होम पूजा कहु देव अर्चा कहु पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहु बीन विद्या कहु गान गीतं कहु मरिज भाग्या कहु वेद रितं कहु नृत्य विद्या कहु नागबानी कहु गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कौ अक्षरा।

ग्रस्तं नाग्रस्तं समस्तं सरूपे नमस्तं नमस्तं तुअस्तं अभूते तो प्रसाद पादरी शांद अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप अद्वैनाथ अंतुट तेज अनखुट भंडार दादा दुरं सर्वंग प्रकार अनभूत तेज अंशेज गात करता सदीव हरतासनाथ आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धरम जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गे नहीं ब्योत पान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गे नहीं चेहन चित्र।

कई अग्न होत्र कई पौन आहार कई करत कूट मृत को आहार कई करत ताग पै पथिर बाछ नहीं तदब देव बहुवत प्रत्यक्ष त्या प्रतीत को बेदी जग्याद कर्म को अग्न होत्र को तीरत तह।

कई तीरथ तीरथ भरम सो भरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदपता स्पायत ना पार कौ राज रीत कौ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र उचरत सो करम निवली आद करम कौ हस्तदान कौ असमेत मक्को बखान कौ करत ब्रह्म विद्या विचार कौ जोग रीत कौ बिरध चार कौ करत दक्ष गंधर्व गान कौ धूप दीप कौ अर्घ दान कौ पितृ करम कौ वेद रीत कौ नृत्य नाच कौ गान गीत कौ करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कही गेहवास कई भ्रमत देह देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्ध लटकंत जा।

पाल दयाल असुवंग जे ठट्यंग मेर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जे रचयंग देव अदेव नर बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जे रचयंग सरब मकीन मका जे राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न सुख सुखंग जे रोग न सोग न भोग पुयंग जे खेद न भेद न शेद शयंग जे जात न पात न मात पतंग जे रचयंग क्षत्रि छत्र छितंग जे राग न रेख न रोग भणंग जे द्वैग न दाग न दुख गणं जे अंड ते ब्रह्मांड रचियो दश्चार करी नव खंड सचियो रजतामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आद प्रचंड लियो श्री सिंधुर बिंद न गिंद न गंग श्री जक्ष गंधर्व फणिंद पुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग पुजंग नरंग रच अंड जिसे तज उत्त पुजंग किए देव अदेव सराज पतंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जे तात न मात न प्रहत सुतंग जे रोग न सोग न भोग पुअंग जे जंप है किन्नर जाछ जुअंग नर नार नपुंसक जाए किए गण किन्नर जाछ भुजंग दिए गज बाज रता दिग पांत गणंग बहु भूत भवेख भवान तुअंग जे अंडज से तज देर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पौन प्रचंड बलि बंजास कियो फल फूल कली भूमेर आकाश निवास छितंग रज रोज एकादश चंद्र व्रतंग दुत चांद दिनी स दीप दई जय पावक पौन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय शपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव अदेव सचे अनधूत अभूत अशूत मतंग अनगाध अभ्याध अनाध गतंग अनखेद अभेद अशेद नरंग जे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जे राग न रंग न रेख रुगंग जे सूग न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सरंग जे बंद देव अदेव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मन मानक मोती लाल सुचे अनभंज प्रभान गंज प्रतंग जे पारणा पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप अदंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपै सुत सिंध अधो मुख ताप तपै कई कल्पन ला तब ताप कर नहीं नय कृपा निध पान पर जय फूकर धर्म सब तज है एक चित्त कृपा निध को जप है तिव्या बहु सागर को तर है बहु भूल ना दे।

भंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्व साथ है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा अगंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिया सदैव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिया नराग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोक अधक अधक है भूत अभरमा भेक है न तात मात जात है न पाच है न वरण है अधेक असेक अभेक है सदैव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्व भरण है जिमी जमान के बिकै सदैव करम भरम है अद्वैक है भेक है अलेख नाथ जानिया सदैव सर्व ठौर में विशेक आन मानिया ना जंत्र में ना तंत्र में ना मंत्र बस आवई पुराण अपुराण नेत नेत कह बतावई ना कर्म में ना धर्म में ना भ्रम में बताइए अगंज आदि देव है कहो सुकैस पाइये जिमी जमान के बिखै समस्त एक ज्योत है ना घाट है ना बाढ़ है ना घाट बाढ़ होत है ना हान है ना बान है समान रूप जानिए मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानिए ना देह है ना गे है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है न दुख है न दाग है न द्वैक है न देह है न सिंह है न सियार है न राव है न रंक है न मान है न मौत है न

है ना देह को बनाओ है, ना शल है ना छिद्र है, ना शल को मिलाओ है, ना यंत्र है ना मंत्र है, ना तंत्र को स्वरूप है, ना राग है ना रंग है, ना रेख है ना रूप है।

गंजह भंजह करीम है कुरान है, अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है, न रोग है न सूग है न भेद है न पंड है, न अंग है न रंग है न संग है न साथ है, प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमाथ है, न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है, न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है, न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है, न शल है न छिद्र है न छिद्र की विभूत है, न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है, न द्वैग है न भेक है न द्वी है न द्रुह है, न काल है न बाल है, सदीव दयाल रूप है, गंज है भंज है भर्म है भूत है, अशेद शेद है सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है बलि अरूप।

नागाज रूप लेखिय अधोक है अदाग है अच्छा प्रताप देखिय न करम है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न यंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न शल है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज सी विभूत है।

हस्त कीट विखे बस सब ठौर में निर्धार जात पात मता जागो मंत्र मात्मा मित्र सर्व ठौर विखे रमियो जे चक्र चिहना चित्र आदि उदार मूरत अगाध नाथ अनंत आद अंत न जानिए अभिखा देव दुरंत देव भेव न जानी जे मरम वेद कतेव सनक औसन केश नंदन पावही न सेव जच्छ किन्नर मच्छ मानस उरग उरग अपार नेत नेत पुकार ही शिव सक्र अमुखचार सर्व सपत पतार के तर जाप ही जह जाप आदेव अगाध तेज अनाद मूरत अताप जंत्र मंत्र न आवी कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहो विराज है सर्व ठौर रहो विराज धीराज राज प्रवीण जक्ष गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णव के बिखे विराज शूद्र भी वह नाये गूढ़ गौर न पिहिल भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप राज दिवस न मध उरध न भूम आकाश अनूप जा जन्म न काय करम न तरम करम विहीन तीरथ जात न देव पूजा गोर के नाधीन सर्व सपत पतार के तर जानिया जह जूत शेष नाम सहंस पन नहनेत पूरन होत सोध सोध हटे सब सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्व पड़त पड़त पड़त थके महाकब गड़द गाड़ अनंत हार हार कहियो सबु मेल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लख्य न सेव कतेव देव दानो मूड मानो जच न जाना जीव भूत भव भवान भूपत आदनाथ अनाथ अगन बाय जले तले मैं सर्व ठौर निवास देह गे न नेह स्नेह अभेहनाथ अजीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयाल अद्वेक चक्र जहना बरंजा को जात पात ना भेख रूप रेख ना रंग जाको राग रूप ना रंग सर्व लायक सर्व घायक।

परंजहना चक्र जाको चक्र चहन आकार जात पात ना गोत्र गाथा रूप रेख ना भरण स्रव दाता स्रव ज्ञाता स्रव भूव को भरण दुष्ट कंजन शत्रु भंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हरता श्रेष्ठ करता।

देव गंधर्व किन्नर माछिका श्यापार भूम आकाश जले तले मेहमानिया जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मैत्र बालक सत्र घालक दीन दयाल मुकंद अघा डंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरणं पुष्ट करणं सर्व के प्रतिपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज पहाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व करम प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन सर्व स्मृतिं सर्व शास्त्रं सर्व वेद विचार दुष्ट हरता विश्व भरता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव अखंड भूम आकाश जले थले महे जप

हरे कई देन कोट इंद्र उप इंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव ना पावई से रुद्र अमुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार।

सब करकूट काष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोद सो थके महासुर पायो नहे पार तो प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा।

दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंडन आदृति चचरासुर मारण पतित उदाहरण नरक निवारण गूढ़ गति अशे अखंडी तेज प्रचंडी खंड उदंडी अलखमती जय जय हो सीमा खासुर मर्दन राम कपर्दन शत्रशिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंडन पुष्ट उदंडन रूपते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र

आयद चमक भूखण दमक अतिथित झमक फंक फनंग जय जय हो सी महासुर मर्दन राम कबरदन जात जिनंग चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकन धुजा फरंकन फणी फुंकारन जोध जिते सरदार विवरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहारखण दुष्ट मथे जय जय हो सी महासुर मर्दन भूम आकाश तद उर्ध अधे दामनी प्रहासन सुछव निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन जोध प्रमाचन निर्दय नराचन धर्म वृते श्रोणांत अचिंति अनल वंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सी महासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अग ओग निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शोध मते फणियर फुंकारण बाग बका।

तारवी प्रतंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन आश भरम विनाशन धर्म धुजे घुंघरू घमंकन शस्त्र झमंकन फणियर फुंकारण धर्म धुजे अष्टात प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाह शुद्ध सनाहे अगम थाहे एक वृते जय जय उसी मैं खासुर मर्दन आज कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंद दुष्ट निकंदन दृष्टि विनाशन मृत्यु मथे कावर कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे केंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तले जय जय उसी सब ठौर निवासन बाहे पताल आकाश अनले संकट निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकरखण तोंद तबे दुग दुग दहंती ज्वाल जयंती आद अनाथ अगाध अछे शुद्धता समर्पण तरक वितरकण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय होसी शास्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तोंद तुरंगण तेछ सरे करकसा कुटारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके केहर नंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होती रक्तासुर खंडन सुंभ चक्रत निसुंभ मथे बारद विलोचन ब्रतन विमोचन सोच विसोचन कौच से दामनी प्रहासे सुख सरना से सुभृत सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रयंगी बेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मैखासुर मर्दन आद अनाद अगाध उर्धंग घंट का विराजा रुण युण बाजा भ्रम भय भाजा सुना सुरंग कोकल सुन लाजा कल भिग भाजा सुकोप राजा माधुरंग

त्याचरी प्रजोदन दृष्टि विरोधन रोष आरोधन क्रूर वृते धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जाग विध्वंसन शोध मते जाल भयंति सत्र मदंति दुष्ट प्रदाहन गाढ़ गति जय जय हो सी मह खासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गति क्षत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गति रणराज विहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आज वृते सुर नर प्रतिपारण पतित उदाहरण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मह खासुर मर्दन विश्व विध्वंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्तन्नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानी प्रकर खण सर्वर वरखण दुष्ट प्रधरखण बितल तले अष्टायद बाहन भूल निवान संत पनाहन गूढ़ गति जय जय होसी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृति दुख दुख प्रभक्षण सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शोध तरे सारंग सनाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमा ने आद अंते जय जय होसी मैं खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करी ली गर्भ गहिली जोत जतिले तोंद मथे अष्टाद चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुगडुगी दमंगा बाघ बबंगा पुझा परंगा शोध गति जय जय होसी मह खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पतित उदाहरण।

दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रारण चार नरक निवार पतित उधार मुंड मथे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन धूम्र विध्वंसन आदि कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान अर्दन बिड़ाल बधे सरदार विवर खन दुर्जन धर खन अतुल अमर खन धर्म दुजे धूमराज विध्वंसन सुन चुनसन सोम्भन पात सोम्भ मथे जय जय हो सी।

उनका कृपा दया भूतान भय दयाल दाता दुरंदुक दोग राज्य नेत ने सब वेद कहत कई ऊंच नीच की नो बना सब बार बार जागो प्रभाव सब जीव जान जानंद जाय मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पद्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरज सेवंत कई पलट सूरज सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वै कह लखाए अनछिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अदया ना सब रोग सोग दे रहत रूप अन

जल छल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात ने भेद भ्रम ने रंग रूप ने एकता हम। जय सत्र मित्र दु एक सार अच्छा स्वरूप चल अपार। जारी न जाय जय रूप रेख जगह बास तास कह कौन फेख। कह नाम तास है कवंजा जय सत्र मित्र ने पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चह ने रंग रूप। जय खेल वेद ने कर्म काल सब जीव जंत की गरत पाल। उर्धंग बिरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग अपाल युद्धंग अनूप। जय रूप रेख ने रंग राग अंशिज तेज अनभिज अदाग। जल थल मही बंतन दुरंग जय नेत ने निर्दन श्रांत। पायो न जाय जय पैर पार दीना दुख दहता उदार। कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट

पार न पाए सकया पद्मावत वीर गदेव अभेद उचारा रोजी राज बलोगत राजिक रोग रोहान की रोजी ना टारा कीट पतंग रंग पुजंगम भूत भविक भगवान बनाए देव अदेव खपे अहंग में भेव लखे भ्रम शिव भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पद शिव किन श्री पद्मा पद पाए आद अनंत अगाध अद्वैक्सु भूत भविक भगवान अभय अंत भीन अनातम आप अदाग अधोग अशिद्र अशह।

काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय देह विहीन स्नेह सबूत नेह विरक्त गेह अशह जान को देत अजान को देत जमीन को देत यमान को दह काहे को डोलत।

और की बात कहाँ कह तू सा, सुपेट ही के पड़ बीज बचावे। जाछ भुजंग सुदान देव अभेव तुम सब ही करते हवे, भूम आकाश पताल रसा तल जाछ भुजंग सब सिर ने आवे, पाय सके नहीं पार प्रभा हु को, नेत ही नेत वेद बतावे, हो ये थके सभी खुजिया सुरहार पर यार हाथ ना आवे, नारद से चतुरान से रुम नारिक से सब हु मिल गायो, वेद कते अपना वेद लगे सब हार पर यार हाथ ना आयो, पाय सके नहीं पार उमा प्रसिद्ध सनातन तंत्र आयो, ध्यान धरो ते गो मन में जय गो तो जगशायो, वेद पुराण कते पुराण अभेद पान सब पजारे, वेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनचेज पुकारे, राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साग ना सोग ना संग तिहारे, आद अनाद अगाध अभेख अद्वैग जप्यो तिन्हे कुल तारे, तीरथ कोट किए स्नान दिए वो दान महाव्रत धारे, देश कर भेष तपोधन केश धरे न

छात्र के चले अछत छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया माँ सतरण के साल है दान के दिवैया माँ मान के बढ़ैया उसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया और विरोध के मिटैया माँ बुद्ध के।

पूर्वी न पार पव हिंगुला हिमल ध्याव गुर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साध पौन साधना की तेग बाध है अरब के आर भी आराध तेरे नाम है। फरागे फिरंगी मन कंधारी कुलेसी जान पच्छम के पच्छमी पच्छरे निज काम है। मरहटा वगैरह तेरी मन सो तपस्या कर जड़वे तिलंगी पहचान तरम धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे मैं चलत है। रोह के रोहिले माघ देश के मघेले वीर बंग सी बुंदेले पापुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के तीस ने वह तिब्बती तिहाय दोग देह के दलत है। जिना तो इतिहायु दिन पूरण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और कहू पे न दीन साधा दीन कहियत है। पाई है न पार तेज पुंज में अपार।

हिंग उलाही मा लगावे है बसी हलबी ध्यावे है पूर्वी न पार पावे असत अनास है। देवन को देव महादेव के देव है निरंजन अभेवनाथ अद्वै विनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटिया जम जाल के। देवन के देव महादेव के देवनाथ भूम के भैया है मुहिया महाबाल के। राजन के राजा महासाजू के साजा महाजोगों को जोग है धरया ध्रुमशाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथिया है के कार है कुचाल के। शीर कहती शिरावद छाछ कहती छतरा नेर छपा कर कहती शव कालिंद्र के कुल के। हंस निसी सिहारू मीरासी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। पारासी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोराती सुरंगाबाद निक रही झूल के। चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदा गढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमऊ गढ़ कांसी पोर सीसा सी सुरंगाबाद नी कैसो हियत है। हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नीर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रा घेर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जो हियत है। गंगा सम गंगधार बकांसी बिलंदाबाद कीरत तिहारी की उजारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है। बखरी कंधारी गोर गखरी गर्दिया चारी पौन के आहारी तेरो नाम दिहाइयत है। पूरव पलव काम रूप कमो सर्व ठौर में बिराज जहां जहां जाइयत है। पूरन प्रताप जन

शोभा वसंत जह तह प्रडुल बन तंदुरंत खग मृग महान जह तह प्रफुल्ल सुंदर सुजान फुल तंग प्रफुल्ल लह लहत मूर थिर ढुरहे जान।

सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के सब राजन के

0: जोगिते
1: मानजोग संगत जी दास एक बेनती करे प्रसंग नूं अगे तुरन तो पहला द्वापर युग दे विच महान अवतार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज होए उन्होंने सामने एक घोल होण जा रहा वा एक घोल कुश्ती जिहनूं आपां कहिंदे आ सतसंग जी इतिहास कहिंदा भी वह दो मल लड़दे पए सी एक दा नाम आ जी जरा सिंध ते एक दा नाम आ जी भीम सैन बड़ा लंबा घोल चलदा रहा फिर मानजोग संगत जी आखिरकार उस घोल दे विच भीम सैन ने हथां दे नाल जरा सिंध दे दो फड़ कीते सी दो फड़ हथां दे नाल कोई तेग दा वार नहीं किया कोई तलवार नहीं मारी केवल बाहां दे नाल लत्तों फड़ के एक जरनैल नूं दो फड़ करता सी उन्होंने वह द्वापर युग का इतिहास वा पर दास बेनती करे सतसंग जी इंग्लिश की एक कहावत हिस्टरी रिपीट इटसेल्फ भी इतिहास अपने आप दोहराया करता वा दुनिया के जे 100 सिपा सलार होया उन्हां जो 10 सिपा सलार इतिहास नूं दुबारा दोहरा के रख देंगे उन्हां विचों एक सन सूरबीर बहादुर बाबा विधि चंद साहब जी मैदाने जंग हो रहा सी तलवारां दे ऐसे ऐसे वार होए ढालां दे फुल चढ़ चुके सन फिर आखिरकार ढाले सतसंग जी खुंडे हो गए तलवारां दा एक वार सांझा होया ते तलवारां वी टुट गईआं रह गए मुठे जरनैलां ने मुठे घुमा के उस उत्ते फिर गल आ गई डौलियां ते जोर ते जो बाबा जी ने आप सुनिया सी सतसंग जी शमश बेग फिर आप अगे वधिया ओह बाबा जी ते पहलवानी दा मारना चाहुंदा वा पर बाबा जी किसे नालों घट नहीं सतसंग जी बाबा विधि चंद साहब जी बारे इतिहास विच बचन आउंदा वा विधियां दी खान विधि चंद छीना गुरु का सीना बाबा जी किसे नालों घट थोड़ी सन फिर जो शमश बेग ने अपना दा मारिया एदा दा रोक के बाबा जी अपना दा चला रहे ने सतसंग जी करदा करदा दा चल गया सूरबीर बहादुर बाबा विधि चंद साहब जी दा दा ऐसा चलिया बाबा जी ने सतसंग जी उस जरनैल नूं ऐन बाहां दे नाल पूरा तां चुक लिया सत फुटे पठान नूं याद रखियो ए ओ शमश बेग वा सतसंग जी जिन्हों अज तक कोई जरनैल तेग दा तवार नहीं सी मार सकिया एडा वड्डा जरनैल सी सतसंग जी हवा विच उड़दे हुए तीर फड़ लैंदा सी एडा वड्डा जरनैल सी अज एडे वड्डे जरनैल नूं गुरां का सीना बन वाली ओ महान पवित्र आत्मा ने ऐन बाहां दे नाल पूरे बल नाल पूरा तां खिंच लिया जिन्हों आपां कहिंदे बाला कढ़ना बाला कढ़ के उहदा बाबा जी ने पड़का के धरती दे उत्ते लम्मे पालिया नूं पड़का के जो धरती उत्ते टिकाणा सतसंग जी उहदे मुखां आवाज निकली हाए अम्मा ते बाबा जी कहिण लगे हुण अम्मा नूं याद करन दा टाइम नहीं अल्लाह नूं याद कर भई इन्नी गल कह के बाबा जी ने उहदी इक लत्त उत्ते अपनी लत्त धर ली फिर दूसरी लत्त बाबा जी ने अपने हत्थां विच फड़ ली सत करतार कह के गुरबरिया काल दा नारा मार के बाबा जी ने ओ लत्त एडी कु जोर दे नाल खिची सतसंग दी लत्तां तों फड़ के ते एडा वड्डा जरनैल दो फड़ करके बाबा जी ने आउल जा सुटिया जो दो फाड़ हो रहा सी पसलियां विचों कड़ कड़ दी आवाज आई मानो ए घोल एडा वड्डा होया सतसंग जी धरती दी धूड़ वी आसमान नूं लग चुकी सी उधरले पासे सनखान कहता महाराज की हो रहा वा पता नहीं लग रहा महाराज कह सनखान सबर कर करतार भली करेगा आसमान की धूड़ ठंडी हुई सतसंग जी दुनिया के लोग हैरान हो गए सत फुटा पठान दो फाड़ करके बाबा जी ने औल जा सुटिया एक ताड़ो दा एक पासे एक ताड़ो दा एक पासे दिल ओदे किते गुरदे ओदे किते ते नाड़ा ओदे खिदरियां फिरदियां सन विचकार लो जी ओ मारिया गया बाबा जी महाराज कोल आ गए ते इधरले पासे सच्चियां सरकारां फिर आप प्यार प्रत्यार हो रही मानजोग संगत जी छेवें पातशाह जी महाराज घोड़े उत्ते सवार होने लगे बाबा विधि चंद साहब जी कलक महाराज कृपा करो ओल ला वेख रह गया वा महाराज ओदा भी कीर्तन सुला मैं पढ़ांगा महाराज कलक वो अपनी फौज का जरनैल वा असीं उहदे नाल आप लड़न वास्ते जावांगे लो जी सच्चियां सरकारां फिर आप तैयार पर तैयार हो गईआं छेवें पातशाह जी महाराज हो गए तैयार पर तैयार लला बेग दे बिल्कुल सामने आ गए हंकार दे रथ ते सवार होया लला बेग आओ तको छेवें पातशाह जी महाराज नूं कहण लगा ऐ पीरे हिंद मैं सुनिया वा वी तेरे वर्गा वड्डा जरनैल कोई नहीं आ बगाने मावां दे पुत मरवाउण नालों चंगा वा दोवें लड़ीए ते जंग दा नबेड़ा हो जावेगा महाराज मुस्कराए महाराज कहंगे ओ लला बेग ओ लाहौर बार विच बड़ियां डींगा मार के आया वा आ तू एक छड दो छड तू तीन वार कर तेनू तीन वार करने मौके दिते लै आओ तको लला बेग छवें पातशाह जी महाराज विचकार जो की गल्लां हो रहीआं ने छवें पातशाह जी महाराज ने जो दो चार बोल उस हंकारी लला बेग नूं आखिया बई वार ते नक्शे विच दल 15 ढाडी जथा इन अल्फाजां विच हे

0: दुश्मन से पिकट के जमराज दी जाई, दुश्मन से पिकट के जमराज दी जाई हो,
1: दुश्मन से पिकट के